भी हुनिया में क्या हो ओ न्यामे वावेनी वो सानो जुमाया वावा वो ना